0: हाथली है आलोदी में संपत आवो
1: दशक हाथ के जनता विश्वास से साह प्रसाद दिनागत क्रिमिराज आयुर्वेद औषध वेतीन क्रिमिराज कराल कुली बड़े अमारु सह लादरु पड़ रोग संधा शनि के सुएड क्रिमिराज कराल कुली आईएसओ जीएमपी तत्व साथ के लात क्रिमिराज निष्पादन कागिल स्लाफ ऐतलु दिवेन पुरा सेलु देशीय औषध वेलंद सल सह ओबट लांग में वेलंद सले
2: ममनंदे मारम रिलैक्स
3: అనమ్మనంగల వదువునా నేదు మే ఎక్స్‌పర్ట్ హరిడం హరిని
4: ఓనమ సంధి వేదనవకట ప్రబలమ విద్యానుకూల విసదమ ఓతుశీల్ యాక్టివ్ ప్లస్